0: यहाँ तो नैनों में
1: बिंदिया है,
0: माथे पे
1: बिंदिया है,
0: तो बालों में
1: गजरा है,
0: आँखों में
1: गजरा है।
0: ओहो।

0: हाय हाय,
1: एक बात बताऊं दोस्त?
2: बता बता, जल्दी बता।
1: एक बार वो मुझे मिलने आई।
2: अच्छा?
1: मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया।
2: फिर क्या हुआ?
1: उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी, बस दोनों देखते रहे।

0: का टेलीफोन आया। हाँ, कहने लगी हेलो
1: हेलो डार्लिंग
0: डार्लिंग।
1: हाँ,
0: फिर क्या बोली?
1: बोली मेरे घर में पार्टी है, आओ। हाँ?
0: जब मैं वहाँ पहुँचा हाँ? तो पता लगा वहाँ उसकी सिवा कोई भी नहीं था।
1: फिर क्या हुआ?
2: मैं था।
1: हाँ,
2: बहुत ही
1: मतलब
2: मैं था।
0: तन्हाई थी उस दिन।

0: शादी की सालगिरह थी,
1: थी?
0: तुम्हें घर जल्दी आना था,
1: आना था।
0: हम दोनों को बाहर जाना था,
1: जाना था।
0: किसी बड़े होटल में खाना खाना था,
1: खाना खाना था।
0: अब कौन बनाएगा खाना?
1: खाना मेरी जाना, खाना पकाएगा तुम्हारा दीवाना। नो टेंशन, एक्शन, अटेंशन, राइट टर्न टू किचन। Left, right, left, left, right, left, left.

होशियार, नाउ एवरीथिंग इज तैयार, खाना चटपटा और मसालेदार। अब आ जाओ मेरी सरकार, तुम्हें पुकारे को।

0: basquidier.
1: Olivier.
0: Non, basquidier.
1: Olivier.
0: पानी दीजिए।
1: आई बात समझ में?
0: आ गई।

पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है।

0: श्रोते हो नमस्कार, तुम्ही ऐकताय रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ, तुमचं जगणं तुमचा आवाज. प्रत्येक गाण्यामागे असते एक आठवण, प्रत्येक सुरामागे असते एक भावना आणि प्रत्येक फरमाईश सांगते एक सुंदर नात्यांची गोष्ट. अशाच गोड आठवणींना उजाळा देण्यासाठी घेऊन आलो आहोत आपला आवडीचा कार्यक्रम आपकी फरमाईश. मी तुमचीच आरजे मुग्धा. चला तर ऐकूयात आजची पहिली फरमाईश.
1: हॅलो रेडिओ विश्वास.
2: नमस्कार.
1: नमस्कार, बोला.
2: जी हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ से.
1: कैसे हो आप?
2: बढ़िया है. अच्छा,
1: फिर बारिश कैसी हो रही है छत्तीसगढ़ में?
2: बारिश अभी होने लगा है एक हफ्ते से.
1: अच्छा, हमारे नासिक में भी बहुत बारिश चल रही है फिलहाल, तो कल से बारिश चल रही है.
2: फिल्म जीवन मृत्यु से सुनवा देंगे, दिल मिल सितारों का आंगन होगा. धन्यवाद.
1: धन्यवाद.

हम तो धर्म कर्म वाले हैं, समझी अजी, हम तो धर्म कर्म वाले हैं, तू है बेशरम। हम तो धर्म कर्म वाले हैं, तू है बेशरम। सबसे अच्छे घर मेरे झाड़ू लगाते हैं, तुझसे अच्छे घर मेरे झाड़ू।

चाहिए ना। तशरीफ लाइए। कमाल है, पहली बार आए हैं हमारे घर आप। अजी पहली बार आपसे हुआ है मिलाप। कहिए कहिए ना।

खुदा की तरह अकेली। आओ आओ ना, क्यों घबराते हो? क्या हमसे कोई खता हो गई? कुछ नाराज नजर आते हो?

जाने की फुर्सत मिली बहुत दिनों के बाद, पर बड़ी उम्र है आपकी, अभी किया था याद।

0: जिसका था इंतजार वो शाहकार आ गया। आइए आइए, मुबारक हो, मुबारक।
1: किस बात की?
0: लो, आज आपकी शादी की सातवीं सालगिरह है। इतना भी याद नहीं मियां?

0: हेलो, गुड मॉर्निंग रेडियो विशाल।
1: हेलो। हाँ,
0: यस, गुड मॉर्निंग। बोला।
1: सुनीता जो बोलते हैं
0: हो,
1: मजबूर।
0: बोला बोला। मी आरजे मुग्धा बोलते।
1: हाँ, हे गाणं लावा म्हटलं। थोराहूनही थोर गोकुळचा जोर, श्रीहरी गोकुळचा जोर।

0: की घास ले डाल को फूंक डालो ना, नीचे से माचिस की कांडी लाओ क्या, अपने हाथ में खाना बना को मुझे खिलाओ ना। अरे मेरी रानी, अरे चुनिया, अरे नादारी तू, अरे खेती, अरे माटी लिली, अरे वापस आ, अरे पलट पलट पलट पलट पलट पलट पलट पलट पलट पलट।
1: हेलो, हाँ रेडिओ विश्वास,
2: मी धुळ्याहून बोलते।
1: हाँ हाँ बोला ना सर, बोला बोला।
2: प्रकाश शिंपी,
1: हाँ हाँ,
2: कुवारा बाप से गाना पाया, कुवारा बाप, मैं हूँ घोड़ा ये है गाड़ी।
1: हो
2: चले चला, ओके धन्यवाद,
1: धन्यवाद।

0: किससे कह रही हो?
1: आपसे?
0: मुझसे? कौन हो तुम? ये घर तुम्हारा है?
1: ये आपको क्या हो गया मम्मी? आपकी तबीयत कैसी है?
2: नलिनी!

0: यहां का काम तो शायद खत्म हो गया है।
1: अच्छा ही हुआ जो काम करते रहे, मैं संभल गई। अब आपसे माफी मांगू।
0: मुझसे?
1: हाँ, आज मेरी वजह से आपका अपमान हुआ।
0: तो क्या हुआ, तुम्हारे भले बुरे के जो जिम्मेदार है क्या उन्हें इतना भी अधिकार नहीं कि तुम्हारी खातिर?
1: समझी, आप अभी तक मुझसे नाराज हैं।
0: नहीं, मैं तो जिंदगी से दूर भाग रहा था, एक ऐसे रास्ते पर से जहां आराम था न किसी पेड़ का छाया, धूल ही धूल थी अपनी नाकामियों की जिसमें मैं अपने आप को खो बैठा था। इतने में तूने मुझे आवाज दी, मैं रुक गया। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं भी जिंदा हूं।
1: दीपक,
0: क्यों आवाज दी तुमने मुझे, क्यों याद दिलाई ये सब कुछ?